0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 11 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: कति छ है तुकुम नारालाई है आज नि
1: नमस्ते नानीमै
2: नमस्ते
0: दाई
2: स्वागत मुनि थप्रे नसर
0: धन्यवाद
2: अनि खनेजी खैजी नानीमै
0: निकास किबे धम्पुसा नासे फोटो खवा दाई

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.